नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। आज दिन है रविवार, सत्संगवत 1948, अषद महीने की आज 21वीं तिथि है। साथ ही अंग्रेजी सन 2026 जुलाई महीने की आज 12वीं तारीख है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। मैं हूं आपका दोस्त इमरान और मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आरंभ करता हूं आज की पहली सभा।

लाभार्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के

0: की प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, आइए अब हम जानते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

रोज की तरह हम आरंभ करेंगे 6:10 पर भक्ति गीतों के साथ। 6:30 पर आप आनंद लेंगे महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम का। 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 7:05 पर पेश करेंगे आज का दिन।

बच्चों पर आधारित कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 7:30 पर। 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर आप आनंद लेंगे कुछ देशभक्ति गीतों का। 8:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

सुरों की रंगोली कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे सुबह के 8:40 पर। 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुअर आंचलिक बातोरी। 9:15 पर हम आरंभ करेंगे हमारे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को, जिसमें सबसे पहले आप सुन पाएंगे खेलमा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे मुलजोनली जैते और उनके साथी। 9:25 पर समय रहेगा ग्रांखोल कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत, जिसके गायक कलाकार रहेंगे लालुंगवा रांखोल और उनके साथी।

जयंतिया कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 9:35 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ भक्ति गीत मेलामबालम प्रिंगे और उनके साथियों की आवाज़ों में। 9:45 पर समय रहेगा बेते कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ पारंपरिक गीत। गायक कलाकार रहेंगे लालरेम रॉबर्ट ब्याते और उनके साथी। सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आप आनंद लेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का। इसी के बीच आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले मिड डे न्यूज़ और उसके तुरंत बाद यानी कि 2:15 पर दोपहर समाचार। 2:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक आप फिर से आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का। इसी के बीच 4 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। श्रोताओ, ये थी जानकारी आज की हमारी पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। आइए अब हम आरंभ करते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफलोंग 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है महिला कार्यक्रम का। आज के इस विशेष अंक में तृष्णा चक्रवर्ती करेंगी मीता दत्ता से एक विशेष बातचीत। आइए सुनते हैं इस रोचक प्रस्तुति को।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग एफ एम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और मैं हूँ आपकी दोस्त तृष्णा चक्रवर्ती, और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम, जो हर नारी के लिए है। नारी के संघर्ष, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं एक मिनट का वुमेन टाइम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ।
1: नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता तुमुंग। मैंने अभी रिसेंटली डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल से 12th पास किया है। मुझे असामीज डांस का बहुत शौक है और मैं बच्चों को डांस सिखाती भी हूँ, जो मुझे बहुत खुशी देती है। डांस मेरे लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक पैशन है, जिसके थ्रू मैं अपनी इमोशंस और क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करती हूँ। मैं एक हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड पर्सन हूँ, जो हमेशा कुछ नया सीखती ही है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। मैं चैलेंजेस से डरने के बजाय उन्हें फेस करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चैलेंज हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। मुझे अपने स्किल्स को और बेटर बनाना है और अपने इंटरेस्ट को एक स्ट्रॉन्ग करियर में कन्वर्ट करना है। मुझे लाइफ में ऐसा कुछ करना है जिससे मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें और मैं अपने आप की एक अलग पहचान बना सकूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि कंसिस्टेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिटर्मिनेशन के साथ हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए फोकस रहती हूँ और हर दिन अपने आप का एक बेटर वर्जन बनने की तरफ काम कर रही हूँ। धन्यवाद।
0: दोस्तों, वुमेन टाइम के बाद आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान उपस्थित है, जी हमारे हाफलों के ही एक प्यारी सी सिंगर मीता दत्ता। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका।
2: धन्यवाद
0: जी, ये कार्यक्रम शुरू करते हैं आपकी एक प्यारी सी संगीत के साथ।
2: मैं आपके सामने एक रविंद्र संगीत गाने की कोशिश कर रही हूँ।

0: धन्यवाद।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही प्यारा संगीत पेश किया है। जी, संगीत के बाद हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आप अपने बारे में विस्तार से बताइए।
0: मैं बचपन से ही ऐसा परिवार में जन्म लिया जहाँ पूरा संगीत का माहौल था। तो बचपन से ही पिताजी, मेरी दादी, नानी सभी ने संगीत के साथ जुड़े हुए थे, गाते थे। तो बहुत छोटी उम्र में ही मुझे म्यूजिक क्लास में भर्ती करा दी, तो वहाँ से ही जाननी शुरू। मैंने शास्त्रीय संगीत, रविंद्र संगीत और नजरुल गीते मेरे गुरुजी श्री तपन कुमार दत्त और रामानुज दासगुप्त सर से मैंने संगीत का शिक्षा प्राप्त की।
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जानकर बहुत अच्छा लगा। जी, जैसे आपने बताया कि आपने संगीत सीखा ही है, जी शादी से पहले और शादी के बाद जिंदगी क्या चेंज हुई है आपकी, या आपने अपना करियर जारी रखा है?
0: नहीं, जारी तो रखा है। मैंने वहाँ पे जैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, बहुत सारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, तो मेरे पिताजी बहुत सपोर्ट करते थे, घर से भी सपोर्ट मिला। तो कंपटीशन में पिताजी लेके जाते थे, तो इधर जब शादी करके आया तो फैमिली में भी सब पसंद करते थे म्यूजिक। तो मेरा हस्बैंड तो बहुत सपोर्टिव है, अभी मेरा बेटी भी। तो यहाँ पे भी मैंने प्रोग्राम करती हूँ, तो लास्ट मैंने रविंद्र जयंती में गाया।
1: जी, ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आपने बताया आपने बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं, जी सबसे यादगार स्टेज परफॉर्मेंस कौन सा है आप?
0: लामडिंग में एक ऑल आसाम कंपटीशन में मैंने पार्ट ली थी, तो वहाँ पे श्रद्धेय श्री दिलीप शर्मा सर जज थे, तो उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे सिखाने की इच्छा जाहिर भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया क्योंकि मैं तब स्कूल में पढ़ती थी, क्लास 8-9 में शायद, तो सीखने का अवसर नहीं मिला क्योंकि दूर में जाके लामडिंग में आके सीखना था, तो वहाँ पे तो नहीं होगा ना, तब नहीं हुआ।
1: जी, ये बहुत ही यादगार एक स्मृति रह गई है आपकी। जी, क्या आप संगीत सिखाती भी है?
0: हाँ, पहले तो सिखाती थी शादी से पहले, तो मैंने मेरा बहुत स्टूडेंट आते थे, तो केबी में भी मैंने करा कॉन्ट्रेक्चुअल में एक साल। तो यहाँ पे आके ऐसे स्कूल तो मेरी नहीं है, ऐसे बच्चे लोग जब कंपटीशन वगैरह होता है या कोई प्रोग्राम होता है आते हैं, मैं सिखाती हूँ, अच्छा लगता है।
1: जी,
0: और कुछ कुछ कंपटीशन में तो मुझे जजमेंट करने के लिए भी बुलाते हैं।
1: जी, आपको कैसा लगता है तब?
0: बहुत अच्छा लगता है, और संगीत के साथ जुड़ी हुई हूँ वो खुशी तो मुझे है।
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे हमें पता है कि आपको गाने का कितना रुचि है, उसके अलावा भी आपकी कोई हॉबी है?
0: हाँ, गाना सुनना और क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, क्रिकेट देखती हूँ और अच्छा अच्छा खाना बनाने में भी शौकीन हूँ। वही
1: जी, जैसे आपने बताया आपको क्रिकेट काफी पसंद है, जी आपका फेवरेट प्लेयर कौन है?
0: सचिन तेंदुलकर सर है और रोहित शर्मा है, ये लोग।
1: जी, और आपने बताया कि आपको गाना सुनना भी काफी पसंद है, कौन से संगीतकार के गाना आप बहुत ज्यादा सुनती हैं?
0: बहुत सारे हैं ऐसे, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, तो गजल भी सुनती हूँ, गुलाम अली, मेहदी हसन और रविंद्र संगीत, जयती चक्रवर्ती, इमोन चट्टोपाध्याय है, तो अच्छा लगता है सुनती हूँ।
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी, जैसे आपने बताया कि आपके घर वाले आपको कितना सपोर्ट करते हैं, कोई भी महिला के लिए सपोर्ट रहना कितना ज़रूरी रहता है?
0: बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा भी जब शादी हुआ, तो शादी होने से पहले तो पिताजी हमेशा चाहते थे जब ग्रेजुएशन कर ली तो जहाँ पे भी शादी देंगे तो फैमिली को रुचि हो संगीत का, वहाँ पे मेरा शादी हुआ। सभी महिलाओं को ज़रूरी होता है, जैसे मेरा हस्बैंड भी सपोर्टिव है, फैमिली भी, मैं जहाँ गाना गाना चाहती हूँ, गाने को लेके जो करना चाहती हूँ या बच्चे लोग सीखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
1: जी,
0: तो ऐसे सबको जरूरी है कि सपोर्ट मिले, जो जिस काम में भी हो, संगीत ना हो या दूसरा कुछ करना चाहते हैं, कोई डांस हो या कोई दूसरा कोई करना चाहते हैं।
1: जी, ये तो बिल्कुल सही कहा है आपने। और एक बात यह है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे स्मृतियाँ तो होंगी, उनमें से आप अपनी कोई स्मृति हमारे साथ शेयर करना चाहें?
0: हाँ, मैं जब छोटी थी तो बहुत छोटी उम्र से ही मैंने गाना सीखना शुरू करा ना, तो मेरे पिताजी मुझे सुबह सुबह उठा के बिस्तर में ब्लैंकेट से पूरा कवर करके मेरे सामने हारमोनियम रखते थे और रख के खुद भी बैठा रहते थे और रियाज करने के लिए। तो वो मुझे अभी भी याद है
1: जी। ये तो काफ़ी प्यारी स्मृति है आपकी जी। आजकल देखा गया है कि वुमेन हर क्षेत्र में ही आगे बढ़ रहा है, तो वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है?
0: महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है, इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं मेरे हिसाब से।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने जी। शादी से पहले क्या आपका कोई सपना था जो आप करियर लेकर या कोई भी पेशन लेकर आगे बढ़ने का आप सपना देखती थी?
0: हाँ बिल्कुल देखते थे। तो मुझे बहुत सीखने का मन था, अभी भी है, बहुत सीखना बाकी है अभी भी। तो अच्छा कोई गुरुजी मिलने से तो मैं तो सीखूंगी।
1: जी बिल्कुल। एज ए सिंगर आपको अपनी आवाज़ को सही रखने के लिए क्या करना पड़ता है?
0: आवाज़ को सही रखने के लिए नियमित रियाज ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है रियाज।
1: जी।
0: सभी गुरुजन कहते हैं कि सा का रियाज, जैसे सा आपका गले में, सा का रियाज करो, सा आपका गले में बैठ गए तो रेगामा पर ध्वनि उसका अकॉर्डिंग सेट होते जाएंगे। तो ज़्यादा ऊंची स्वर में बात मत करिए ऐसे।
1: जी, और जैसे आपने बताया कि सा का रियाज और बाकी वगैरह जैसे ठंडा पीने में और या आइसक्रीम खाने में, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना पड़ता है?
0: कोई कोई तो बोलते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं करा। मैं तो आइसक्रीम मेरा फेवरेट है, मैं खाती हूँ, अचार भी खाती हूँ, खट्टा भी खाती हूँ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गले में दर्द है या कुछ तब तो नहीं खाना चाहिए ना।
1: जी हाँ, कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ गॉड गिफ्टेड है इसी वजह से। जैसे आपने पहले ही बताया कि आप गाना सिखाती है, तो बच्चों को गाना सिखाती है, बच्चों को गाना सिखाते हुए कैसा लगता है आपको?
0: बच्चों को सिखाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत मैं जितना जानती हूँ उसको ही देने की कोशिश करती हूँ या प्रयास करती हूँ। तो उन लोगों का जिज्ञासा और सीखने का उत्साह मुझे बहुत प्रेरित करती है। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, तो सीखने का इच्छा मुझे अभी भी है।
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। जैसे कि कोई स्टूडेंट जिसे सीखने का मन है लेकिन उस कह सकते हैं उसकी आवाज़ थोड़ी बैठ गई हो, तो उसको आप कैसे मोटिवेट करती हैं?
0: पहले तो अपना स्केल ठीक करो, उस स्केल के हिसाब से आप अगर रियाज करते जाओगे तो आपका आवाज़ भी ठीक होते जाएंगे।
1: जी, आपके हिसाब से मतलब कोई भी एज में गाना सीख सकता है?
0: हाँ बिल्कुल सीख सकता है
1: जी। और जैसे अभी आप एक जैसे आपने बताया कि आपको और भी बहुत कुछ सीखने का मन है, आपकी कोई विश है कि आप वो अब भी पूरी करना चाहो?
0: हाँ, अगर कोई अच्छा गुरु मिले तो मैं सीखने की इच्छा तो रखती हूँ अभी भी।
1: जी, कोई संगीत पार्टिकुलर सीखना है आपको या वही जो संगीत है जो आपने सीखा है उसमें और भी ज़्यादा आपको बेहतरीन होना है?
0: हाँ, और भी ज़्यादा बेहतरीन होना है, अब तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं सीखा।
1: जी, जैसे कह सकते हैं कि लर्निंग का कोई एंड नहीं होता है। जी बिल्कुल जी। जैसे आपने बताया आपकी एक बेटी भी है, एज ए मदर आप कैसे देखती हैं अपनी ज़िंदगी को?
0: वही जो मैं तो छोटी जगह से हूँ, मैं जितना करा वो का जन से करा और शास्त्रीय संगीत नजरुल गीते मैंने दिमापुर जाके करा
1: जी।
0: तो मैं जो सपना पूरा नहीं कर सका वो मेरी बेटी से चाहती हूँ, इच्छा है बेटी करे। तो वो भी गाना सिखाए लेकिन उसका इंटरेस्ट ज़्यादा डांस में है
1: जी।
0: तो वो तो करती रहती है डांस।
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका सपोर्ट उसके पास हमेशा रहेगा जी। जैसे आपने बताया कि आपने गाना दिमापुर जाकर सीखा है, कैसे थी जर्नी? आपका घर से काफी दूर था?
0: ज्यादा दूर तो नहीं था, 20 मिनट्स 25 मिनट्स ऐसा लगता है, गाड़ी से जाती थी, दादा जाते थे साथ में, तो वहाँ से सीखे। फिर वहाँ पे मामा भी रहते हैं और वहाँ से सीखे, पिछले दिन सुबह सुबह आके फिर स्कूल ज्वाइन करती थी।
1: जी जी, बहुत मुश्किल रहता था आपके लिए?
0: हाँ मुश्किल तो रहता था लेकिन उसी टाइम में सीखने का एक उत्साह था ना, तब मुश्किल भी आसान लगती थी।
1: जी, ये तो
0: अच्छा लगता था बहुत। हाँ
1: जी, आप जैसे आप एक माँ है, आप एक लड़की थी, बेटी थी, उसके बाद बहू थी, फिर माँ है, तो आपका लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं पहले से ही माँ से बहुत जुड़ी हुई थी
1: जी।
0: हाँ, लगाव था माँ से, तो जहाँ पे भी जाती थी मैं माँ के साथ। तो मेरा बेटी भी मेरी जैसा ही हुआ, वो भी जहाँ पे भी जाती है मेरे साथ। तो माँ को बहुत मिस करा पहले, अभी मैं माँ होके वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ।
1: जी, कैसा लग रहा है आपको?
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा
1: जी। आज जो भी आपको सुन रहे हैं, जितने भी हमारे श्रोता है, सबके लिए आपकी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: अपने शिक्षाओं को महत्व दीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, संगीत से जुड़े रहिए। संगीत सिर्फ कला नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे मधुर माध्यम है। जो गिटार है, नृत्य है और आर्ट है, मैंने कुछ चीज से जुड़ा रहना चाहिए मतलब।
1: जी, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपकी बातें सुनकर शायद हर कोई ही आपसे गाना सुनेंगे और अपने जो भी उनका पसंदीदा जो भी है उन पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम शेष करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप और एक संगीत हमारे लिए सुनाएं।
0: अभी मैं एक नज़रुल गीत गाने की कोशिश कर रही हूँ।

0: धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत प्यारा संगीत है और आपकी बहुत ही मीठी सी आवाज़ है, मैं खो ही गई थी मानो। आशा करते हैं आपकी जितनी भी इच्छाएं और आशा है वो ज़िंदगी में पूरी हो, और आपको हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए अपने संगीत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम को आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर, और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, जिसमें तृष्णा चक्रवर्ती ने मीता दत्ता से विशेष बातचीत प्रस्तुत की। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत

0: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब हम आरंभ करते हैं आज का दिन, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस पोयम को जिसे प्रस्तुत किया है शहनाज बेगम ने।
2: Good morning, everyone. My name is Shanaz Begum, studying in St. Agnes Higher Secondary School. Today, I will recite a poem. The title of the poem is The Lords of Life. The Lords of Life, the Lords of Life. I saw them pass in their own guise, like and unlike, portly and grim, use and surprise, surface and dream, succession swift and spectral wrong, temperament without the tongue, and the inventor of the game, omnipresent without name. Some to see, some to be guessed. They marched from east to west, little man, least of all, among the legs of his guardian stall, walked about with puzzled look. Him by the hand dear nature took. Dearest nature, strong and kind, whispered, darling, never mind. Tomorrow they will wear another face. The founder though, these are the race. Thank you.
1: अब पेश है आज का दिन।

श्रोताओ, आज 12 जुलाई है। आज का दिन भारतीय सिनेमा के उन चमकते सितारों और उनके शानदार सफर की दास्तान सुनाता है, जिन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से कई दशकों तक हमारा मनोरंजन किया। दूसरी तरफ ये तारीख हमें एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी भी सुनाती है, जिसने शिक्षा के लिए दुनिया भर में एक नई अलग जगाई। अंतरिक्ष के सफल अभियानों, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले बड़े फैसलों और असम में प्राकृतिक आपदाओं के संघर्ष की यादों को समेटे हुए चलिए पलटते हैं 12 जुलाई की इतिहास के पन्ने।

राजनीति के इतिहास में साल 1806 का आज का दिन बहुत अहम था, जब लिएचटेनस्टाइन ने खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश घोषित किया था। सैन्य सम्मान के पन्नों में 1862 की ये तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अमेरिकन कांग्रेस ने देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान मेडल ऑफ ऑनर को आधिकारिक मंजूरी आज ही के दिन दी थी। भारत की राजनीति में 1949 को एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा हुआ प्रतिबंध आधिकारिक तौर पर हटा दिया था। संगीत की दुनिया में 1962 की 12 जुलाई को एक नया दौर शुरू हुआ था, जब मशहूर इंग्लिश रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन्स ने लंदन के मार्की क्लब में अपना पहला ऐतिहासिक कॉन्सर्ट किया था। दुनिया के नक्शे पर 1975 में आज ही के दिन एक नया बदलाव आया, जब साओ टोम एंड प्रिंसाइप ने पोर्टुगल के शासन से अपनी पूरी आज़ादी का ऐलान किया था। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1982 में आज ही के दिन एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, जब देश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की स्थापना की थी।

खेल के मैदान पर 1998 में आज ही के दिन एक नया इतिहास रचा गया था जब फ्रांस की नेशनल फुटबॉल टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ब्राजील को हराकर अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। असम के इतिहास में 2004 का यह दिन एक प्राकृतिक आपदा से हुए कड़े संघर्ष की याद दिलाता है। आज ही के दिन ब्रह्मपुत्र नदी के अचानक उफान आने पर कारण असम सरकार को गंभीर बाढ़ का अलर्ट जारी करना पड़ा था, जिसके बाद बड़े स्तर पर बचाव कार्य शुरू की गए थे। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में 2010 की ये तारीख भारत के लिए बेहद खास रही। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपने मशहूर PSLV रॉकेट की मदद से 5 अलग अलग सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। शिक्षा और मानवाधिकार के लिए 2013 का आज का दिन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया था।

पाकिस्तान की साहसी लड़की मलाला यूसुफजई ने यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण देकर दुनिया भर के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की मजबूती से मांग की थी। श्रोताओ, अब आइए जानते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ।

पर्यावरण और प्रकृति से गहराई से जुड़े महान अमेरिकन राइटर और दार्शनिक हेनरी डेविड थोरियो का जन्म साल 1817 में आज ही के दिन हुआ था। फोटोग्राफी की दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति लाने वाले महान अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और कोडेक कंपनी के संस्थापक जॉर्ज ईस्टमैन ने 1854 में 12 जुलाई को ही दुनिया में कदम रखा था। इटली के मशहूर और दुनिया भर में अपनी कला के लिए पहचाने जाने वाले महान पेंटर एमेडियो मोडिग्लियानी का जन्म साल 1884 में आज ही के तारीख को हुआ था। साहित्य की दुनिया में अपनी कविताओं का जादू बिखरने वाले और नोबेल प्राइज जीतने वाले महान चिलियन पोएट पेब्लो नेरुडा का जन्म साल 1904 में आज ही के दिन हुआ। इंडियन सिनेमा के महातनम फिल्म डायरेक्टर में से एक बिमल रॉय का जन्म 1909 में 12 जुलाई को ही हुआ था।

विज्ञान के क्षेत्र में अपनी शानदार खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीतने वाले अमेरिकन साइंटिस्ट विलिस लैम का जन्म साल 1913 में आज ही के दिन हुआ। क्रिकेट के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाने वाले मशहूर इंडियन क्रिकेट प्लेयर संजय मांजरेकर ने साल 1965 में आज ही के दिन जन्म लिया था। टेबल टेनिस के खेल में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले शानदार खिलाड़ी शरद कमल का जन्म साल 1982 में आज ही को दिन हुआ। पॉप म्यूजिक की दुनिया की जानी मानी अमेरिकन सिंगर बेबे रेक्सा ने साल 1990 में 12 जुलाई को ही इस दुनिया में कदम रखा था। लड़कियों की शिक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाली और नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली साहसी सामाजिक कार्यकर्ता मलाला युसुफ़ज़ई का जन्म साल 1997 में आज ही को हुआ था।

श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिनका निधन आज ही के दिन हुआ। अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाली महान नेता अलेक्जेंडर हैमिल्टन का निधन साल 1804 में 12 जुलाई को ही हुआ था। ऑटोमोबाइल की दुनिया की सबसे मशहूर और शाही कंपनी रोल्स रॉयस के सह संस्थापक चार्ल्स रोल्स ने साल 1910 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। इतिहास और पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले मशहूर इंग्लिश राइटर गर्ट्रूड बेल का निधन 1926 को आज ही के दिन हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बेहतरीन नेतृत्व क्षमता दिखाने वाले अमेरिकन सेना अधिकारी और राजनेता थियोडोर रूजवेल्ट जूनियर का निधन साल 1944 में आज ही के दिन हुआ। इंडियन सिनेमा के बेहद लोकप्रिय कलाकार राजेंद्र कुमार का निधन साल 1999 में 12 जुलाई को ही हुआ था। उनके चाहने वाले उन्हें जुबली कुमार के नाम से भी बुलाते हैं।

कुश्ती के अखाड़े से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक अपना लोहा मनवाने वाले महान इंडियन रेसलर और एक्टर दारा सिंह ने साल 2012 में आज के दिन अंतिम सांस ली थी। इंडियन सिनेमा के इतिहास में खलनायक की भूमिका को एक नया और खौफनाक आयाम देने वाले दिग्गज एक्टर प्राण का निधन साल 2013 में आज ही के दिन हुआ। हॉलीवुड सिनेमा के मशहूर और खूबसूरत अमेरिकन एक्ट्रेस केली प्रेस्टन ने साल 2020 में 12 जुलाई को ही दुनिया से अलविदा ली थी। बास्केटबॉल के खेल में अपना एक अलग पहचान बनाने वाले शानदार अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर पॉल सिलस का निधन 2023 में आज ही के दिन हुआ। और इसी के साथ यहीं पर समाप्त होता है आज का दिन। अब जाते जाते आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत।
1: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये

बच्चों पर आधारित कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अच्छी आदतें और बेहतर जीवन के बारे में। बच्चों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल हो, हम अपने परिवार का नाम रोशन करें और एक अच्छे इंसान बने। वही माता पिता भी यही सपना देखते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर सफल हो, समाज में सम्मान पाए और अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा इंसान बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या ये केवल अच्छी पढ़ाई से होती है? क्या केवल बड़े सपने देखने से सफलता मिल जाती है? या फिर इसकी शुरुआत हमारे रोज़मर्रा के जीवन की छोटी छोटी आदतों से होती है? दरअसल जीवन की सबसे बड़ी सीख हमें किसी बड़ी किताब से नहीं बल्कि अपनी छोटी छोटी आदतों से मिलती है। समय पर उठना, अपने काम को जिम्मेदारी से करना, सच बोलना, दूसरों का सम्मान करना, अपने आसपास सफाई रखना, प्रकृति का ध्यान रखना और ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद करना, ये सभी ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को निखारती है।

अच्छी आदतें किसी एक दिन में नहीं बनती, इन्हें अपनाने के लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, और जब यही प्रयास लगातार जारी रहता है तो यही आदतें हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती है, और यही चरित्र आगे चलकर हमारी पहचान बनाता है। आज के समय में जब जीवन बहुत तेज़ी से बदल रहा है और नई नई तकनीकें हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, तब अच्छी आदतों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बदलते समय के साथ कदम मिलाना ज़रूरी है, लेकिन अपने अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार को साथ लेकर चलना उससे भी ज़रूरी होती है। इसी विषय पर आज हम आपसे कुछ विचार साझा करेंगे। हम जानेंगे कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, परिवार को मजबूत करती है और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती है। तो आइए इस सार्थक बातचीत की शुरुआत करते हैं।

यही सवाल आता है कि आखिर अच्छी आदतें होती क्या हैं। अच्छी आदतें वो छोटे छोटे काम हैं जिन्हें हम बिना किसी दबाव के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाते हैं। ये आदतें न केवल हमारे व्यवहार को बेहतर बनाती हैं, बल्कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे निर्णय और हमारे व्यक्तित्व को भी आकार देती है। मान लीजिए, यदि कोई बच्चा रोज़ समय पर उठता है, अपने स्कूल की तैयारी खुद करता है, अपने माता पिता की बात ध्यान से सुनता है और अपने शिक्षकों का सम्मान करता है, तो धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित होने लगती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने वचन का पक्का हो, समय का सम्मान करे, दूसरों की भावनाओं की कद्र करे और हर काम ईमानदारी से करे, तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं और विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। बच्चों, अच्छी आदतों का संबंध केवल हमारे घर या स्कूल तक सीमित नहीं होती, इनका प्रभाव हमारे पूरे समाज में पड़ता है। जब हम सड़क पर कचरा नहीं फेंकते, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखते हैं और दूसरों की अधिकारों का सम्मान करते हैं, तब हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हैं।

आज के समय में हम सभी तकनीक से जुड़े हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इनका सही उपयोग करना भी एक अच्छी आदत है, लेकिन यदि इनका उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे तो ये हमारी पढ़ाई, स्वास्थ्य, पारिवारिक रिश्तों और दिनचर्या पर असर डाल सकता है। इसलिए हर सुविधा का उपयोग संतुलन के साथ करना ही समझदारी है। एक और बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वह है धन्यवाद और कृपया जैसे सरल शब्दों का महत्व। ये छोटे छोटे शब्द सामने वाले को प्रति हमारे सम्मान को व्यक्त करते हैं। एक मधुर मुस्कान, विनम्र व्यवहार और मदद का हाथ कई बार ऐसे काम कर जाता है जो बड़े बड़े शब्द भी नहीं कर पाते। याद रखिए, अच्छी आदतें किसी पर थोपने से नहीं आती, वे परिवार के वातावरण, अच्छे संस्कार और अपने स्वयं के प्रयास से विकसित होती है। जब घर के बड़े स्वयं अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों को अलग से सिखाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। इसीलिए चाहे हम बच्चे हो या बड़े, यदि हम हर दिन अपने व्यवहार में छोटी सी अच्छी आदत जोड़ने का प्रयास करें तो समय के साथ वही छोटी सी आदत हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है।

प्रिय बच्चों, हमने आज अच्छी आदतों के बारे में बात की। अब प्रश्न यह है कि इन आदतों की शुरुआत कहाँ से की जाए। इसका उत्तर बहुत सरल है, शुरुआत आज से, अभी से, और सबसे पहले स्वयं से। यदि हम हर दिन एक छोटा सा संकल्प लें कि आज हम एक अच्छी आदत को पूरी ईमानदारी से अपनाएंगे, तो कुछ ही समय में वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा प्रयास करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे वही आदत हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बच्चों, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने शिक्षकों से सीखने का प्रयास कीजिए, अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहिए और हमेशा सच बोलने की कोशिश कीजिए।

पढ़ाई के साथ साथ खेल, संगीत, पुस्तकें और परिवार के साथ बिताया गया समय भी जीवन को संतुलित बनाता है। वही मैं अभिभावकों से भी ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को केवल अच्छी बातें बताना ही पर्याप्त नहीं है। बच्चे सबसे ज़्यादा वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। यदि परिवार में आपसी सम्मान, प्रेम, अनुशासन और सकारात्मक वातावरण होगा तो बच्चे भी इन्हें मूल्य को अपने जीवन में अपनाएंगे। आखिर परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला है और माता पिता उसके पहले शिक्षक। याद रखिए, एक अच्छा समाज तभी बनता है जब हर परिवार अच्छे संस्कारों को महत्व देता है, और एक अच्छा परिवार तभी बनता है जब उसके सदस्य छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें कि हम समय का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे, दूसरों के प्रति विनम्र दिखाएंगे, प्रकृति और अपने आसपास के वातावरण को ध्यान रखेंगे तथा हर दिन अपने व्यक्तित्व को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज का यह बाल कार्यक्रम यही विराम देते हैं। आशा है कि आज की ये चर्चा केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य के लिए उपयोगी रही होगी। यदि हम सभी अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास करें तो हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश निश्चित रूप से और अधिक सुंदर, अनुशासित और संवेदनशील बन सकता है। इसी के साथ यही पर समाप्त होता है बच्चों पर आधारित कार्यक्रम। अब आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत, ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और
2: प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति में गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता युरियाले माओ तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। समाचार पंजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रट नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी

0: के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नो सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डाब्रोवस्की और लुइसा स्टेफिनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
0: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरि के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब 1 हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम।

इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: Shillong has been entrusted with hosting the event for three consecutive years. This time, Shillong will host the event from 31st July to 20th August with eight matches. Meghalaya will be represented by three football clubs, Shillong Lajong FC, Nongse Sports and Culture Club and Langsning Club. He also highlighted the Chief Minister's football mission through which 125 grassroots football centres are nurturing more than 10,000 young footballers, including over 2,400 girls. The mission is created to strengthen clubs, coaches, competition and football infrastructure across Meghalaya. Manipur Chief Minister Yumnam Khemchen Singh yesterday inaugurated the 19th Governor's Taekwondo Cup, which is organized by the All Manipur Taekwondo Association at Kuman Lampak Indoor Stadium, Imphal. The championship, which will continue till 15th July, has drawn a total of 1,141 players representing 29 units, comprising 691 men and 450 women. The Chief Minister said that Manipur has produced more than 40 international players due to the unwavering commitment of the All Manipur Taekwondo Association. The inaugural event was also attended by Manipur Youth Affairs and Sports and Home Minister Govindas Kanthaujam, MLAs, officials of State Youth Affairs and Sport Departments, coaches and players. Before we wind up the news headlines once again, Chief Minister Conrad K. Sangma directs Deputy Commissioners in Meghalaya to remain on high alert due to heavy rains. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha emphasizes on preparedness for potential waterlogging and flood situations. National Highway 10 connecting Sikkim and West Bengal closed to all vehicular traffic till 13 July. And Manipur Chief Minister Yumnam Khemchen Singh says government taking all steps to ensure justice in Leilon Vaifei abduction case. With that, we end the Northeast News Bulletin from Akashvani Shillong. Have a nice day.
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
2: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग,
3: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
2: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 टू 2 पीएम ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
1: ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं सुरों की रंगोली कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आनंद लेंगे पापुआन के कुछ बेहतरीन गानों की।

इसी के साथ ही यही पर समाप्त होता है सुरों की रंगोली कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आपने सुना पापोन के कुछ बेहतरीन गाने। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुअर आंचलिक बातोरी।

इसी गीत के साथ यहीं पे समाप्त होता है खेलमा गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार थे गुलजुनली जैते और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब हम आनंद लेते हैं रांखोल कार्यक्रम का और सुनते हैं कुछ भक्ति गीत लालुंगवार रांखोल और उनके साथियों के आवाज़ों में।

इसी गीत के साथ यही पे समाप्त होता है रांखोल गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप आनंद ले रहे थे कुछ भक्ति गीतों का। गायक कलाकार थे लल्लुंगवा रांखोल और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए अब हम आरंभ करते हैं जयंतिया कार्यक्रम का और आनंद लेते हैं कुछ भक्ति गीतों का। गायक कलाकार है मेलम बालम प्रिंगे और उनके साथी।

इसी के साथ ही यहीं पे समाप्त होता है जयंतिया गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार थे मेलामबलम प्रिंगे और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब हम आनंद लेते हैं बेते कार्यक्रम का और सुनते हैं कुछ पारंपरिक गीत, जिसके गायक कलाकार रहेंगे लालरेम रॉबर्ट ब्याते और उनके साथी।